अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अर्धना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या राम लला की श्रृंगार आरती।

श्री सारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी।

की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की।

भर्जनम भवपीतानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग जाय यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

प्रस्तुत है श्री मद भगवद गीता का सरल व संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 3 कर्म योग। पिछले अध्याय में श्री भगवान की वाणी से भ्रमित अर्जुन पूछता है कि हे जनार्दन, मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म हेतु प्रेरित करने का क्या अभिप्राय है। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण उसे कर्म योग, ज्ञान योग वे कर्म बंधन के सिद्धांतों को समझाते हैं। वे यज्ञ की महिमा का भी वर्णन करते हैं। अर्जुन पूछता है,

0: के।
1: श्री कृष्ण महापुरुषों द्वारा उत्तम आचरण एवं जनहितकारी कर्मों की आवश्यकता पर बल देते हुए मानव मात्र को अपने प्राकृतिक गुणों से प्राप्त स्वधर्म का निर्वाह करने को कहते हैं।

अर्जुन के पूछने पर वार्ष्णेय कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम व क्रोध मनुष्य का महान शत्रु तथा पापी होता है। श्री भगवान इस काम रूपी दुर्जय शत्रु पर स्थिर मन व बुद्धि से विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं।

नदी यानी जीवन धारा, जिसकी गोद में सदियों से पोषित और विकसित होती रही है मानव सभ्यता और संस्कृति, जिसके किनारे साक्षी हैं इतिहास के। स्थापत्य की विशिष्ट शैलियों का जहां होता रहा है जन्म और निर्मित होते रहे हैं हमारे पूजा स्थल, ज्ञान के खुलते रहे हैं चक्षु और पाते रहे हैं लोक से परलोक तक के रहस्यों की दिव्यताएं। नदी न केवल देती है जीवन मनुष्यों को, बल्कि माँ की तरह पालती है जगत के सभी प्राणियों और वनस्पतियों को। नदी का अर्थ मात्र बहता पानी नहीं है, पुरातन से नूतन के विभिन्न जीवन स्वरों की राग मालिका है नदी।

0: महर्षि गौतम के बारे में एक और कथा कही जाती है।
1: इस प्रदेश में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। महर्षि गौतम ने अपनी तप शक्ति से खेत जोतकर अनाज पैदा किया और सभी को भोजन कराया। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने एक दुबली गाय उनके खेत में चरने के लिए छोड़ दी। महर्षि ने उस पर एक कुश चलाया, गाय मर गई। गो हत्या के पाप से बचने के लिए उन्होंने घोर तप किया। उस पाप को धोने के लिए स्वयं गंगा जी को उपस्थित होकर उस स्थान से बहना पड़ा।
0: गौतम महर्षि की ये गंगा ही गोदावरी बनी। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि और वशिष्ठ सात शाखाओं में गोदावरी को आगे लाए। धवलेश्वर के सामने ये नदी दो शाखाओं में बट गई, पूरब में गौतमी, पश्चिम में वशिष्ठा, और वहां से फिर दो शाखाएं होकर पूरब में सागर से संगम।
2: नमस्कार राजेश दीक्षित जी, हम लोग पर्यटक हैं। गोदावरी नदी के जन्मस्थल से लेकर सागर संगम तक की यात्रा हमारा उद्देश्य है। ब्रह्मगिरी मंदिर आपका आराधना स्थल है, कृपया हमें जानकारी देंगे।
3: महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय है जो सबसे मान्यता प्राप्त है। हर 12 बरस में इधर एक कुंभ मेला होता है जहां साधु लोग अपने आध्यात्मिक अनुभव आपस में बयान करते, आपस में चर्चा करते हैं, उसको कुंभ मेला कहते हैं। इधर ब्रह्मगिरी पर्वत है, उसको प्रदक्षिणा लगाते हैं श्रावण महीने में। ये जो त्र्यंबकेश्वर आद्य ज्योतिर्लिंग है, इसी ज्योतिर्लिंग को राजा ये पदवी है। यहाँ गौतम ऋषि ने जहाँ तपस्या की है वो भी मंदिर है। तो ब्रह्मगिरी जो शिखर है ब्रह्मगिरी पर्वत का, उससे गोदावरी का उगम स्थान है। इधर पेशवे है जो पहले बालाजी विश्वनाथ पेशवे, उन्होंने इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और तब से वो चालू हो गया था। श्रीमंत माधवराव पेशवे उनके काल में ये पूरा हुआ। ऐसा सभी वारकरी संप्रदाय हो या नाथ संप्रदाय हो या वामाचारी तांत्रिक संप्रदाय हो, सब संप्रदाय इस भूमि से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मदेव की पूजा सिर्फ यही होती है। अपने हिंदू धर्म में ब्रह्मदेव की पूजा कभी नहीं करते, लेकिन इधर वो इस लिंग में ब्रह्मदेव की पूजा होती है। दूसरी बात ऐसी कि शिवलिंग को हम प्रदक्षिणा नहीं लगाते, लेकिन यहाँ शिवलिंग में तीनों भी देव है, विष्णु और ब्रह्मा, त्रिगुण स्वरूप है ये त्र्यंबकेश्वर। तो इसलिए इसे आद्य ज्योतिर्लिंग, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबक राज कहते हैं।
0: ये है कुशावर्त। गंगा द्वार से निकली गंगा कुशावर्त पहुंचकर ही तो गोदावरी बनी।
2: ये है केदारेश्वर। लगभग 300 साल पहले ये मंदिर बनाया गया था।

0: शुक्ल यजुर्वेद का पाठ चल रहा है। ये गंगा गोदावरी का मंदिर है। हमने सुना है कि यहाँ माघ शुक्ल दशमी को गोदावरी का जन्मदिन मनाया जाता है। 12 दिनों का उत्सव।
1: अगला उत्सव 11 जनवरी 1991 को होगा। लाखों लोग आते हैं उत्सव देखने। मानव मानव के बीच ऊंच नीच का भेदभाव न हो, यही है नाथ परंपरा का मौलिक उद्देश्य। सुप्रसिद्ध नाथ परंपरा का जन्म त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ था।
2: गोदावरी के पावन जल से पल्लवित और सिंचित है नासिक, युगों से पवित्र। कृतयुग में ये पक्षनगर था, त्रेता में त्रिकंटकम, द्वापर में इसे नवशिखा कहा गया।

0: जो समय के साथ बदलते बदलते नासिक बन गया। गोदावरी का पूर्व तट पंचवटी कहा जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करते समय मनाया जाता है कुंभ। कहते हैं,
1: एक बार गरुड़ जब अमृत कुंभ को भूमि पर ला रहे थे, तब उसमें से चार बूंदें भूमि पर गिर पड़े थी। जहां वे चार बूंदें पड़ी, उनमें नासिक भी एक है। बाकी तीन हैं हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैनी, और इन्हीं स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है।
2: रामकथा प्रसिद्ध है पंचवटी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को यही विरूप किया था। यहाँ पांडवों और बुद्ध की गुफाएं भी हैं।
3: नासिक जितना अतीत के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही आधुनिक तीर्थों के लिए भी। तुमने ये जानकारी अपनी डायरी में लिख ली है ना? आओ, अब हम लोग करेंसी प्रेस देखने चलेंगे।
4: और हाँ, थर्मल पावर स्टेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कारखाना अपनी अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। कहते हैं नासिक जिले में 100 से अधिक बड़े उद्योग हैं।
3: गोदावरी नदी पर एशिया का दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध सॉइल डैम बनाया गया है, जो 10 किलोमीटर दूरी पर है। इसे ही गंगापुर डैम कहते हैं।
4: अब यहाँ से हमारी यात्रा का अगला पड़ाव होगा पैठण।
3: पैठण में हमें मिलना है आचार्य ब्रह्मानंद देश पांडे जी से। ये इतिहास के विद्वान हैं।

0: गाथा सप्तशती विश्व का पहला संकलित काव्य संग्रह है। अपने राज प्रासाद में बैठकर गोदावरी के तरंगों को निहारता हुआ वह महाराष्ट्र प्राकृत में झूम झूम कर गाता था, सच्चम भण गोला वई पूव समुद्रेण सहिया संति सालाहण कुल सद्यसम जईते कूले कूलमत्थी। सच बोलो गोदावरी, तू पूर्व समुद्र तक बहते जाती है, क्या सातवाहन कुल जैसा पराक्रमी और वैभवशाली एक भी राजकुल तेरे तीरों पर बसा हुआ है? यह थी सातवाहनों की विजय गाथा। यह भूमि संतों की है, यह भूमि योद्धाओं की है, भट्टोजी दीक्षित जैसे वैयाकरणों की है जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पर टीका लिखी। यह भूमि चित्रकारों की है, लेकिन इन खंडहरों से गुजरते हुए एक भावना मन में जाग उठती है कि एक समय था कि जब पैठन समूचे महाराष्ट्र का केंद्र था, एक समय था जब पैठन समूचे भारतवर्ष का केंद्र था, एक समय था जब पैठन समूचे यूरोप और आशिया खंड का केंद्र था।
1: पैठन यानी मंदिरों का नगर, सात वाहनों की राजधानी, प्रतिष्ठान नगर, अनेक विभूतियों की जन्मस्थली। सन 1533 में स्वामी एकनाथ का जन्म यहीं हुआ था। कोई 700 वर्ष पहले चक्रधर स्वामी यहां पधारे थे और महानुभाव पंथ की स्थापना की थी।

0: नदी के किनारे पहले बनते थे मंदिर और अब बन रहे हैं बांध और कारखाने, जो समृद्धि और विकास के चरण हैं। पैठण बांध के अलावा मजलगांव और दुधना बांध भी हैं। लगभग 4,60,000 एकड़ में सिंचाई की जाने लगी है। सिंदपण, पूर्ण और दुधना आकर यहीं गोदावरी में मिलती हैं। नांदेड़ होकर गोदावरी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में बहती है और पोलवरम के पास मैदान में प्रवेश करती है। धवलेश्वरम के पास आकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, गौतमी और वशिष्ठा।
1: कहते हैं देश में तीन स्थानों पर ही सरस्वती के मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर बासरा आदिलाबाद में है। मूर्ति रेत की बनी है।

0: कालेश्वर महाक्षेत्रम को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र में गोदावरी उत्तर की ओर से मुड़कर सीधे पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है। अर्धचंद्राकार दृश्यावली बड़ी मनभावन लगती है। और द्राक्षारामम का भीमेश्वर, श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन मंदिरों के साथ कालेश्वर के मंदिर के कारण ही इस प्रदेश को त्रिलिंग देशम भी कहा जाता है।
1: रामावतार के 25 क्षेत्र स्थानों में भद्रगिरी प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ श्री आदि शंकराचार्य भी पधारे थे।
2: गोदावरी के किनारे किनारे अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का स्थापत्य हमें अपने गौरवशाली अतीत से साक्षात्कार कराता है, और जहाँ सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, धर्म, इतिहास के विकास की कहानी कहता है, वहीं वर्तमान में भविष्य की जो नींव रखी जा रही है उसका सुख भी देता है।
1: आदिकाल की गाथा आदिवासियों की संस्कृति के बारे में जाने बिना अधूरी है। हैदराबाद स्थित आदिवासी संस्कृति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था के संयुक्त निदेशक श्री चंचुराजू से इस बारे में जानकारी मिल सकती है।
3: आदिवासी संस्कृति परिशोधना मरी शिक्षण संस्थ अने मन आंध्र प्रदेश में 1963లో హైదరాబాద్ నెలకొల్పనా ముఖ్యమైనటువంటి అతి సున్నితమైనటువంటి విషయాలను గిరిజన సంస్థ
4: ఇస్ సంస్థకి స్థాపన సన్ 1963 में हुई थी। मुख्य रूप से यहाँ पहाड़ी लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में इनकी 33 जातियाँ हैं। अधिकारियों को कक्षाओं के आयोजन के द्वारा इनसे परिचित कराया जाता है। हमारा एक ऐसा विभाग भी है जो ये देखता है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है अथवा नहीं, क्योंकि कई गैर पहाड़ी लोग भी पहाड़ी होने का प्रमाण पत्र पाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे भी उनके समान लाभ प्राप्त कर सकें। शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष योजना आरंभ की गई है। आश्रम पाठशालाएं खोली गई हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी तरह से तैयार कराया जाता है।
0: आर्थिक योजनाओं की जानकारी लेते हैं श्री विद्यासागर से।
5: आर्थिक अभिवृद्धि पथकाल पद्धति प्रकार जरूरत मोटमोदी गिरीजन मागण समाराधन अने कार्यक्रम कभुत्व भूमि ने दिन चूसी कोलची वाली पटाची मुझे
6: सरकार ने अनेक आर्थिक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। भूमि और उसके पट्टे देना, भूमि को उपजाऊ बनाना, कुएं, गहरे कुएं, तालाब आदि से लिफ्ट सिंचाई की सुविधा देना, 3 से 5 वर्ष तक उनकी देखभाल के लिए खर्चा भी सरकार देती है। रेशम उद्योग के लिए बगीचे लगाए जाते हैं, उनकी आमदनी बढ़ सके और रोजगार के नए अवसर मिल सके, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। 15 वर्षों के लिए योजनाएं बनाते हैं।
1: अपरिचित से परिचित होने का सुख कितना मधुर होता है, ये हम गोदावरी की यात्रा के समय ही जान सके हैं। हमारे साथ संस्मरणों की अनेक डायरियों की पूंजी इकट्ठी हो गई है,
0: और आज हम अपने आप को संपन्न समझ रहे हैं, क्योंकि हम जान सके हैं अपना अतीत और वर्तमान। इस महान नदी के तट पर विकसित हो रही सभ्यता को अपनी आंखों देखा, और किए हमने हिमालय से समुद्र तक की एकता के दर्शन। जिसे किताबों में पढ़ते रहे उसे सामने देखने का सुख सचमुच वर्णनातीत है।
7: ओम अधात पंचांग रुद्राणाम ओंकार मंत्र संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं तस्मै नकाराय नमो नमः ओम भवद्भवस्वः ओम नम अम कंखंगंगम।
1: गोदावरी के साथ साथ हम भी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आंखों के सामने सागर संगम के मनोहारी चित्र तैर रहे हैं।
0: लेकिन हमारी यात्रा का अगला पड़ाव तो है कुवुरु। शैव से वैष्णव की ओर मुड़ेंगे अब हम यहाँ। मेरा मतलब है कि गौड़ीय मठ चलेंगे, और वहां हम नादल्ला वेंकटराव जी से मिलेंगे।
1: इस स्थान की विशेषता क्या है?
0: चैतन्य महाप्रभु यहाँ पधारे थे और 10 दिन तक रहे थे।
1: अच्छा, तो चलो

0: येशुदास जी, आप इस गौतमी ग्रंथालय के अध्यक्ष हैं, हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए ना।
1: राजमहेंद्र लो कवि वीरेशलिंग अनुचरुलैन नाळं कृष्णाराव गारु स्थापिंचिन वीरेशलिंग ग्रंथालयं, वसुराय ग्रंथालयं, रत्नकवि ग्रंथालयं वंटि एन्नो ग्रंथालयालनु
0: राजमहेंद्री में नाळं कृष्णाराव जी ने सन 1898 में इसकी स्थापना की। बाद में इसमें अनेक ग्रंथालय मिल गए। यहाँ लगभग 56,000 ग्रंथ हैं, तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी के। मुगल राजाओं के जमाने में छपा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, संस्कृत बाइबल, अमूल्य पुरानी पत्रिकाएं, ताड़पत्र पर ग्रंथ, ब्रजभाषा में लिखे कबीर अभंग की प्रति आदि उपलब्ध हैं। रीडर्स एसोसिएशन के अंतर्गत यहाँ गोष्ठियों का आयोजन होता रहता है।
2: पुरातत्व के संबंध में जानकारी के लिए हम किससे मिलें?
3: पुराकालीन अनुसंधान संघ के सचिव श्री यादगिरी नरसिम्हाराव जी से।
2: नमस्कार नरसिम्हाराव जी, सुना है यहाँ खुदाई हुई थी
0: और उसमें अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं।
4: अनेक సంవత్సరాల నుంచి అనేక విధాలుగా పురావస్తు సేకరణ జరుగుతోంది। ముఖ్యంగా
5: कई सालों से यहाँ पुराकालीन वस्तुओं का संग्रह हो रहा है। यहाँ के सरकारी म्यूजियम में अनेक अनुपम कालखंड हैं, शिलालेख और ताम्रलेख भी हैं, सुंदर मूर्तियाँ भी हैं। कोई 10 वर्ष पूर्व खुदाई में अद्भुत नंदी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, काकतीय राजाओं के जमाने की। दूसरी शताब्दी के एक बौद्ध विहार का भवन भी हमें मिला है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का एक औजार भी मिला है।
0: अरे इस ओर तो देखो, जीव कारुण्य संघ। चलो भीतर चलकर देखते हैं।
3: नमस्कार श्रीमती रमन चौधरी, हम लोग पर्यटक हैं, गोदावरी दर्शन के लिए निकले हैं। आपकी संस्था का बोर्ड पढ़ा तो जानने की जिज्ञासा हुई।
6: पवित्र गोदावरी तीरों लो राजमंड्री लो गौतमी जीव कारुण्य संघम 1940 संवत्सर स्थापिंचबडिंदि। मुख्यंगा अनाथल सेव, कुष्ठरोगुल सेव, अनाथ प्रेत संस्था।
7: 1940 में इसकी स्थापना हुई। अनाथ लोगों की सेवा, कोढ़ियों की सेवा, अनाथ शवों का दाह संस्कार, बाढ़, तूफान, आग, दुर्घटना आदि विपत्तियों के समय राहत देने और समाज निर्माण के काम चलते रहते हैं। सर्वधर्म समानता का प्रचार हमारा मुख्य उद्देश्य है। नारी कल

0: अभियान और सामाजिक वन योजना आदि कार्यक्रम भी चल रहे हैं। अनाथ वृद्ध आदि के लिए चिकित्सा और भोजन की सुविधाएं भी दी जाती हैं।
1: गोदावरी पर धवलेश्वर के पास बना बांध अपनी विशेषता लिए हुए है। 1852 में ये बांध बनकर तैयार हुआ था। इसे सर आर्थर कॉटन की कल्पना का साकार रूप कहा जाता है।
2: लोग उन्हें आधुनिक भगीरथ कहते थे। नया बांध बन जाने के बाद पुराने बांध के नमूने सुरक्षित रखे गए हैं। गोदावरी की यात्रा भी दर्शाई गई है।
3: और महान इंजीनियरों श्री विश्वेश्वरैया, केएल राव और एनजी के मूर्ति के तैलचित्र भी लगाए गए हैं। ये भी बताया गया है कि उन दिनों कैसे परिस्थितियों में ये बांध बनाया गया था। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर श्री वेंकट रेड्डी से प्राप्त करते हैं कुछ और जानकारी।
4: आनेकट निर्माणों तो गोदावरी डेल्टा प्रांत पंट पोला तो सस्यश्यामें गोदावरी तूर्पुर डेल्टा 258,000 गोदावरी मध्य डेल्टा
5: बांध के निर्माण से गोदावरी का डेल्टा उपजाऊ हो गया है। धान मुख्य उपज है। ईख और केले के बगीचे हैं। अकेले धान की पैदावार लगभग 35 लाख टन तक पहुंच गई है, जिसका मूल्य कोई 600 करोड़ रुपए से भी अधिक होता है।
1: करीब 150 वर्ष पुराने इस बांध के पास ही नया बांध बनाया गया है, जो 1989 में बनकर तैयार हुआ। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर करीब 100 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। दक्षिण भारत में इस तरह का प्रयोग पहली बार यहीं किया गया है।
2: गोदावरी यात्रा का एक भाग कोटपल्ली में समाप्त हुआ। हाँ, तो अब हमारी यात्रा का अगला चरण आरंभ होता है।
3: यानी अब हम कोनसीमा मंदिरों के घर में हैं और यहाँ से पहुंचेंगे मुक्तेश्वर।

0: चारों तरफ धान के खेत और नारियल के पेड़ नजर आ रहे हैं। कहते हैं यहाँ उत्तम खादी भी बनती है।
1: और एक अनोखी बात देखी, पता ही नहीं लगता कि एक गांव की सीमा कब खत्म हो गई और दूसरे की शुरू।
0: मेरी डायरी में लिखा है कि नरसापुरम में बुनाई का काम बहुत अच्छा होता है। श्री सत्यनारायण को लेस मेकर अवार्ड मिला है। चलो उनसे मिलकर बात करते हैं।
2: लेसर ने लिख लो मात्र
3: लेस में हमारा दर्जा अव्वल है। हमने यूरोप में नया मार्केट बनाया। करीब 1.5 करोड़ रुपए के माल का हम निर्यात करते हैं। हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि है।
1: श्री आरामम चालुक्य और पल्लव राजाओं के शिल्प के वैभव का प्रतीक है यहाँ का गोपुर। ये गोपुर राज्य के देवालयों में सबसे ऊंचा है। कहते हैं ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी ने यहाँ तप किया। यहाँ सागर और वशिष्ठा गोदावरी का पवित्र संगम होता है। माघ शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ भगवान का कल्याण मनाया जाता है। लाखों लोग यहाँ आते हैं।
4: ओम अधात पंचांग रुद्रानाम ओंकार मंत्र संयुक्तम ध्यायन योगान।
1: ब्रह्मगिरी से निकली गोदावरी ब्रह्म के तप स्थल तक कल कल करती आती है और समुद्र से मिलन करती है। समुद्र के भीतर कोई 4 मील दूरी पर होता है महोत्तम संगम। ये दृश्य नीले आकाश और नीले समुद्र जल के मिलन की परछाई दिखाने वाले दर्पण सा लगता है। गोदावरी की यात्रा अतीत से वर्तमान की यात्रा, सभ्यता और संस्कृति के विकास और ज्ञान की यात्रा।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

शिव महिमा, महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव

शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना, सती दाह से दुखी होकर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन हो गए। इसका लाभ उठाते हुए असुर देवताओं पर हावी हो गए। असुर राज तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। हैरान परेशान देवताओं के लिए शिव पुत्र का पैदा होना आवश्यक बन गया। बहुत विचार विमर्श के साथ ब्रह्मा और विष्णु समस्त देवताओं के साथ गिरिराज हिमवान के पास गए। वहां सबने मिलकर महादेवी शिवा की स्तुति की। प्रसन्न होकर जगदम्बा ने वरदान दिया कि वे हिमवान की पत्नी मीना के गर्भ से पार्वती बनकर अवतरित होंगी। इस प्रकार शिव मोहिनी पार्वती का जन्म हुआ। देवी पार्वती

0: युवावस्था को पहुंच चुकी थीं, परंतु महादेव की तपस्या का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। परम पिता ब्रह्मा ने चिंतित हिमवान को आदेश दिया कि पार्वती शिव प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करें। लीजिए सुनिए अब आगे की कथा। इस प्रकरण के रूपांतरकार और लेखक हैं अनिल सूद।
1: परम विद्वान शौनक जी, देवी पार्वती को तपस्या करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु देवादिदेव का ध्यान तब भी न टूटा।
2: महाभाग सूत जी, इससे तो हिमवान और मीना की चिंता और भी बढ़ गई होगी।
1: हाँ, ये तो स्वाभाविक ही था, परंतु मीना की चिंता का कारण कुछ और ही था।
2: वो क्या सूत जी?
1: उनके हृदय में रह रहकर मुनि नारद का कथन कौंद रहा था कि पार्वती को एक कुरूप, अर्धनग्न, दरिद्र पति रूप में प्राप्त होगा। एक बार बड़ी विचित्र घटना घटी।
2: वो क्या सूत जी?
1: देवी मीना अपनी दिनचर्या से निवृत्त हो सो रही थी। देवी पार्वती भी अपने दैनिक व्रतों को श्रद्धा पूर्वक पूरे कर सो रही थी। तभी ब्रह्म मुहूर्त में माता और पुत्री को एक ही जैसे स्वप्न आए। एक के लिए वो सुस्वप्न था तो दूसरी के लिए दुस्वप्न।
3: अरे कैसा दिव्य वृषभ है ये! गले में स्वर्ण की घंटी, किसी राज मुकुट जैसे सिंह, मानो स्वयं नंदीश्वर चले आ रहे हो। ओह कैसा फत्ता काला वृषभ है! देखिए नुकेली सिंह, मानो अभी मेरा तन मन चीर डालना चाहते हो। बिल्कुल यमराज के भैंसे के समान। वृषभ पर आरूढ़ सन्यासी का मुखमंडल कितना तेजोमय है! ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण जगत का पुरुषत्व उन्हीं में समा गया हो। होठों पर मंद मंद मुस्कान, वृषभ पर ये कुरूप भभूतधारी बैठा है, तन पर व्याघ्र खाल उड़े, मेली कुचैली जटाएं, मानो वर्षों से स्नान न किया हो, रक्त रंजित नेत्र।
4: भिक्षुक आया है देवी, भिक्षा दो।
3: अवश्य ऋषिराज, आप यहाँ इस आसन पर क्षण भर विश्राम करें, मैं अभी आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ।
5: नहीं, तुम कोई कुलहीन अघोरी लगते हो, हम ऐसे अपवित्र और अस्वच्छ व्यक्तियों को भिक्षा नहीं देते।
4: जलपान के लिए धन्यवाद देवी पार्वती, आप अति सभ्य एवं धर्माचरण वाली हैं।
3: आपकी इस प्रशंसा से मैं धन्य हुई मुनिवर, ये सब प्रभु शंकर की भक्ति का ही फल है।
5: अरे ये कितनी कुटिल और कामुक दृष्टि से पुत्री पार्वती की ओर देख रहा है, कौन हो, कौन हो तुम?
4: मैं शिव हूँ, पार्वती को साथ ले जाने आया हूँ।
3: मेरा जीवन सार्थक हुआ देवाधिदेव, अंततः आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो ही गए। चलिए देव।
4: चलिए।
5: नहीं नहीं, तुम शिव नहीं हो सकते, तुम अवश्य ही कोई मायावी असुर हो, मेरी पुत्री का हरण करने आए हो। छोड़ो छोड़ो इसका हाथ, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, प्राण त्याग दूंगी, परंतु इसे तुम्हारे जैसे कर्कश और कुलहीन के हाथों नहीं सौंपूंगी, नहीं कभी नहीं। रक्षा

0: स्वप्न देख रही थी। हे प्रभु, एक कैसा भयंकर स्वप्न था, भयंकर स्वप्न, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। कैसा कैसा भयंकर था, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। हे प्रभु, हे प्रभु, ये स्वप्न सच न हो प्रभु, सच न हो दया निदान, ये स्वप्न सच न हो। चलो चलो देव मान से इस स्वप्न का अर्थ पूछती हूँ।
1: कितना मनोरम और दिव्य स्वप्न था। स्वयं देवादिदेव मुझे लेने आए थे। मैं तो इस स्वप्न मात्र से धन्य हो गई।
2: भार्य मीना
3: जी। देव।
2: पुत्री पार्वती
3: जी। पिताजी,
2: आप दोनों के स्वप्नों में प्रभु शिव शंकर ने ही दर्शन दिए थे। पुत्री पार्वती, तुम्हारे हृदय पटल पर बचपन से ही तेजस्वी प्रभु की सौम्य और सुकोमल छवि अंकित है, इसलिए वो इसी रूप में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए। और भार्य,
3: कहिए स्वामी।
2: आपके मन से नारद जी द्वारा चित्रित प्रभु छवि मिट नहीं पा रही है, इसीलिए वो आपके मन वांछित रूप में प्रकट हुए, परंतु थे दोनों देवाधिदेव ही।
3: स्वामी हिमवान, यदि शिव जी का वही स्वरूप है जो मैंने देखा है, तो वो मुझे स्वीकार नहीं है।
2: भार्य।
3: हाँ, मैं कदापि अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में नहीं दूंगी।
2: तुम्हारा पुत्री प्रेम आदरणीय है, मैं भी पार्वती से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि तुम, परंतु भार्य, हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते। और तथ्य यह है कि देवर्षि नारद की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। पार्वती को शिव मिलेंगे, परंतु किस रूप में, ये जानने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी देवी, प्रतीक्षा।
4: मुनिवर शौनक जी, पिता के मुख से ये सुनकर कि उन्हें शिव अवश्य मिलेंगे, देवी पार्वती प्रसन्न मन से फिर शिव आराधना में जुट गईं। देवी मैना भी शांत हो गईं, परंतु अन्यत्र विपत्तियों के घोर घन गरज उठे थे।
5: विपत्तियों के घन, वो कैसे सूत जी?
4: देवादिदेव के ध्यान मग्न होते ही असुरों के उत्पात बढ़ गए थे। तारकासुर इतना बलशाली हो गया कि उसने तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। देवेंद्र को हराकर वो इंद्रासन का स्वामी भी बन बैठा। देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी एकत्र होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे।
6: हम जानते हैं देवगण, हम जानते हैं, ये विष वृक्ष हमारा ही बोया हुआ है। हमारे वरदान से सिंचे हुए इस असुर ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है।
5: और ब्रह्मदेव, ये वृक्ष तब तक नहीं कट सकता जब तक स्वयं शिवपुत्र रूपी कुल्हाड़ी इसे काट ना डाले। कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा विधे, महाप्रभु की तंद्रा भंग करनी ही होगी।
6: हाँ विष्णु जी, जो हम नहीं चाहते थे वो हमें अब करना ही होगा। प्रभु के मन में अस्वाभाविक रूप से प्रेम का प्रत्यारोपण करना ही होगा। कामदेव।
2: आज्ञा परम पिता ब्रह्मा।
6: हमारी इच्छा है पुत्र कामदेव कि तुम रति के साथ गंगोत्री तीर्थ जाओ। वहां ध्यान मग्न शिवजी के मन में देवी पार्वती के प्रति आसक्ति भरने का प्रयास करो।
2: अर्थात?

0: अर्थात उनकी तपस्या भंग कर दूं? दक्षराज के प्रति महाप्रभु का क्रोध सबको ज्ञात है प्रभु।
1: कामदेव, हम देवता हैं, जन कल्याण के लिए हमें सभी विषमताओं का सामना करना पड़ता है। भयभीत होना हमारे स्वभाव में नहीं है। फिर तुम्हारे पास तो अचूक काम बाण भी हैं, ऐसे ही कठिन अवसरों के लिए तो हैं। आवश्यकता पड़े तो उनका उपयोग करने में झिझकना नहीं।
0: आपकी आज्ञा का पालन होगा परमपिता।
2: विप्रवर शौनक जी, कामदेव और रति अपने दल बल समेत गंगोत्री तीर्थ पहुंचे।
3: महाभाग सूत जी, दल बल से आपका क्या तात्पर्य है?
2: शौनक जी, अपनी सहायता के लिए रति और कामदेव वसंत देव तथा अनेक किन्नर वादकों को भी लेकर गए थे, ताकि शिव जी का मन मोहने के प्रयास में कहीं कोई कमी न रह जाए।
0: देवी रति, मन तो नहीं करता कि इतने निश्चल भाव से तपस्या में लीन महाप्रभु की तपस्या में विघ्न डाला जाए, परंतु ब्रह्म आदेश मानना हमारा परम कर्तव्य है। आओ कोई युक्ति सोचे देवी, जिससे प्रभु की तंद्रा भंग हो सके।
4: जी देव।
0: नृत्य, नृत्य। हाँ देवी, नृत्य। देवी रति, तुम नृत्य करो।
4: नृत्य?
0: हाँ, तुम्हारे नुपुरों की झंकार और किन्नरों के वाद्यों के मधुर स्वर अवश्य ही महादेव का मन मोह लेंगे। किन्नरों, अपने वाद्यों से ऐसा मधुर और उत्तेजक संगीत उत्पन्न करो जो प्रभु के हृदय के तारों को झंकृत कर दे।
2: प्रभु पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। देवी रति, भाव भंगिमा को और उत्तेजक करो। संगीत की गति तीव्र कीजिए किन्नरों। नहीं नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। और उत्तेजक, उत्तेजना की चरम सीमा, और तीव्र गति, और गतिमान संगीत।

0: बस बस देव बस, और संभव नहीं है। नृत्य करते करते 8 प्रहर बीत गए हैं, मेरे पांव प्राणहीन हो रहे हैं, मेरे नुपुर टूट चुके हैं जो अमंगल सूचक है। देव कुछ कुछ और उपाय कीजिए।
1: और उपाय? हाँ, वसंत, वसंत देव। वसंत देव के आगमन से तो हिमपिंड भी पिघलना आरंभ हो जाता है देवी। चारों ओर रंगों की फुहारें फूट उठती हैं, मन आनंद के हिंडोले में झूल उठता है। वसंत देव आप ही अपनी लीला रचिए, इस कठोर पर्वत प्रदेश को वसंती सौम्यता में बदल डालिए। वसंत देव बदल डालिए। वसंत देव, हो देवी रति, वसंत देव भी सफल नहीं हो पाए।
0: देव।
1: हाँ देवी।
0: अब तो मात्र एक ही उपाय बचा है।
1: क्या?
0: आपके काम बाए।
1: हाँ?
0: परम पिता ने भी आपको इनके प्रयोग की अनुमति दी है।
1: आप ठीक कहती हैं देवी रति, ठीक कहती हैं आप। मेरे सामने अब और कोई विकल्प नहीं रह गया है, परंतु देवी रति मैं तो इसकी कल्पना मात्र से सिहर उठता हूँ। भय है कि देवाधिदेव की ओर बाण लक्षित करते समय कहीं मेरे हाथ ना कांप उठे, लक्ष्य ना चूक जाए।
0: स्वयं देवाधिदेव का स्मरण करते हुए बाण चलाएं देव, वो अलक्षित नहीं हो पाएगा।
1: हाँ, उधर उस विशाल वृक्ष की ओट से बाण चलाता हूँ।

प्रभु पर सामने से वार करने का साहस मुझ में नहीं है। वसंत देव, किन्नरों, आप भी वृक्षों की ओट ले लें। प्रभु, देवाधिदेव, महादेव, क्षमा, क्षमा प्रभु, क्षमा, मैं विवश हूं। ओम नमः शिवाय। ओम

0: शिवा। अरे अरे अचानक मेरे शरीर में ये कंपन कैसे हुआ? मानो कोई अदृश्य वस्तु मेरे आर पार हो गई हो। ये मेरे चारों ओर ये मनोरम वातावरण, मेरे अंदर कौन सी भावना जाग रही है? परंतु मैं तो तपस्या कर रहा था, उसमें ये विघ्न किसने डाला? किसने मेरे चित्त में ये विकार पैदा किया?
1: देव।
0: हाँ देवी।
1: दूसरा बाण चलाइए, प्रभु का क्रोध बढ़ रहा है।
0: हाँ देवी। हाँ। अरे कामदेव ठहर जा, धनुष में ही रोक ले अपने बाण को।
2: हे परमपिता, हे भगवान विष्णु, शक्ति दे, शक्ति दे ताकि मैं दूसरा बाण चला सकूं और प्रभु का क्रोध शांत कर सकूं। ये क्या, मेरा बाण प्रभु तक पहुंचने से पूर्व ही ध्वस्त हो गया?
0: दुस्साहसी कामदेव।
2: हे प्रभु,
0: तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तुझे इस अपराध का दंड मिलेगा। तूने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुझे भस्म कर दूंगा।
1: महाप्रभु का तीसरा नेत्र खुल रहा है।
2: देवी,
1: ये तो अग्नि किरण बनकर मेरे पति की ओर बढ़ रही है।
2: महादेव,
1: इसने तो कामदेव को भस्म कर डाला। महादेव, ये क्या हुआ? ये मैंने क्या कर डाला? क्यों आपको दूसरा बाण छोड़ने को प्रेरित किया? मैं क्या करूं?

0: ब्रह्मदेव, देवी रति तो पति वियोग में मूर्छित हो गई, और देखिए तो महाप्रभु के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि विकराल रूप से फैलने लगी है। मूर्छित देवी रति को भी निगलने को झपट रही है। कुछ करे विधात।
1: मैं नेत्र बंद कर दिव्य अश्व का स्मरण करता हूं।

0: अस्मि अहम् ब्रह्मास्मि दिव्य अश्व उपस्थित हो हे दिव्य अश्व इस अग्नि को अपने शरीर में धारण करो
1: अग्नि इस वाडव अर्थात अश्व में प्रवेश कर गई है ब्रह्मदेव नेत्र खोलिए
0: हे वडवानल जाओ समुद्र के गर्भ में समा जाओ प्रलय काल तक समुद्र का जल पीकर इस अग्नि को शांत रखना प्रलय आने पर ही तुम समुद्र से ज्वालामुखी के रूप में फूटकर सब कुछ भस्म कर दोगे

0: हे देव, हे स्वामी, मैं आपकी दोषी हूँ, मुझे क्षमा करें। देव, आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, त्याग दूंगी।
1: शांत शांत हो जाओ पुत्री रति।
0: कैसे शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो जाऊं? हे ब्रह्मा, हे विष्णु, इस अभागन का भी अंत कर दीजिए। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम।
1: हे दयानिधान, हे कृपा सिंधु परमेश्वर, नेत्र खोलिए प्रभु, हम भक्तों पर कृपा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए।
2: हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा हृदय बहुत खिन्न है।
3: महाप्रभु, आप तो भक्तों के बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं, फिर कामदेव ने ऐसा अपने किसी स्वार्थ साधन के लिए तो नहीं किया था?
1: उसे हमारा ही आदेश था प्रभु। तारकासुर से पीड़ित हम सब देवों ने ही उससे यह करवाया था। देवाधिदेव, यदि आपने अपना क्रोध नहीं त्यागा और हमें क्षमा नहीं किया, तो हम सब यही समझेंगे कि आप हम सबका संहार कर देना चाहते हैं।
3: दयानिधान, देवी रति पर दया कीजिए प्रभु, कामदेव इन्हें लौटा दीजिए प्रभु। बिना पति पत्नी शोषण और धिक्कार का पात्र बन जाती है।
2: विष्णु हरे, हम अपने ही किए को बदल नहीं सकते, परंतु रते
0: जी महाप्रभु,
2: द्वापर में कामदेव कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होंगे, उनका नाम प्रद्युम्न होगा। जाओ, शंबर नगर में कामदेव के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करो।
0: जो आज्ञा देवाधिदेव, जो आज्ञा।
1: परंतु महादेव, काम के बिना तो दैहिक संबंधों द्वारा उत्पत्ति ही समाप्त हो जाएगी, सृष्टि का विस्तार कैसे होगा महाप्रभु?
2: ठीक है, मैं सबके हृदयों में काम को फिर जीवित कर दूंगा। निश्चिंत रहिए, मेरी तपस्या भंग हो चुकी है, अब मुझे कैलाश लौटना होगा।
4: और महाज्ञानी शौनक जी ये कहकर शिवशंकर अंतर्धान हो गए। देवी रति पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में शंबर नगर में जा बसी। सभी देवता अपने अपने धामों को लौट गए,
5: परंतु महाभाग सूत जी, समस्या तो वही की वही रह गई। इस सब उपक्रम का उद्देश्य था तारकासुर वध के लिए शिव पुत्र की उत्पत्ति, वो तो नहीं हो पाई ना।
4: शौनक जी, कार्यों में व्यवधान तो आते ही रहते हैं, फिर शिव पुत्र उत्पत्ति कोई साधारण कार्य तो था नहीं, दैवी विधान था जिसे अपने निश्चित समय पर पूर्ण होना था।
5: परंतु सूची, व्यवधान आने पर हाथ रखकर तो नहीं बैठा जाता, प्रयास तो जारी रखने ही पड़ते हैं।
4: विप्रवर सूची, प्रयास जारी रहे, या यूं कहिए कि प्रयासों की तीव्रता बढ़ गई।
5: वो कैसे सूची?
4: बताऊंगा महामुनि शौनक जी, अवश्य बताऊंगा, परंतु आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कथा भी लंबी है, जारी तो रहेगी।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के

प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज़ सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

एक श्री माता ललिता जी, ऐश्वरी ना महाराजनी, शोभायुक्त ए सिंहासन ऊपर विराजेला सिंहना अग्नि कुंडरूपी ज्ञान माथी उत्पन्न प्रगट थयेला देवोना कार्य माटे तत्पर साथे चरणमाना नखरूपी चंद्रना किरणों वड़े जनमानस ना तमोगुण ने हरी लेना।

ये दुर्गा माता सती साध्वी भगवान शिव पर अपार प्रीति रखनारा भवानी संसार ना बंधन माथी मुक्त करनारा आर्या दुर्गा जय अपावनारा आद्या त्रिनेत्रा त्रिशूल धारिणी दुर्गा देवी ने अमे प्रणाम करिए।

अर्थात शरद ऋतुना चंद्रना किरणो एमना जेवी उज्ज्वल कांतीवाळा उत्तम रत्नो जमा जळ्या छे ते मकराकृती कुंडल तथा हार वगैरे आभूषणो थी शोभता दिव्य आयुधो थी ओपता दिव्य नील रंगना हजारो हाथ वाला लाल कमल जेवा चरणों वाला परमेश्वरी श्री माताजी नू हूँ प्रातःकाले स्मरण करूँ छू नमन करूँ।

अर्थ महिषासुर चंड मुंड अने शुंभ आ असुर दैत्योनो विनाश करवामां चतुर ब्रह्मा इंद्र रुद्र तेमज मुनिजनों ने मोह पमाडनारा एवा विलक्षण चरित्र वाला अनेक स्वरूपो धारण करनारा दरेक देवताना स्वरूप वाला चंडी दुर्गा माता जी ने अमे प्रातः काले नमन करिए छे वंदन करिए छे।

ಕಗನ ಬರುವಾಯೋ, ಅಂತರ ತೀರು ಕಗನ ಬರುವಾಯೋ, ಅಪನೀ ಸುರತಿ.

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना।